गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। दुनिया तुम्हें तब तक हल्के में लेगी जब तक तुम खुद को गंभीरता से लेना शुरू नहीं करते। अगर हम ही बहुत ही हल्के हैं, हमारा कैरेक्टर ही बहुत ऐसा है कि हमें कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है, या हमारा खुद का अपनी ही नजरों में कोई वजूद नहीं है, और ऐसा तब होता है जब हम खुद के ऊपर काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं? इस दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े वकील हैं, या कोई भी जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है, वो हर रोज खुद को बेहतर बनाते हैं, कुछ नई बढ़िया किताबें पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने दिमाग को और मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वो लेते रहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के ऊपर कभी फोकस नहीं कर पाते। इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया तब तक हमें हल्के मिलेगी जब तक हम खुद को हल्के मिलेंगे। अगर हमने अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, दुनिया अपने आप बढ़ाना शुरू कर देगी।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। हारने वाला वो नहीं जो गिर गया, हारने वाला वो है जिसने उठने की इच्छा ही छोड़ दी। दोस्तों, अपनी ऊर्जा लोगों को जवाब देने में मत लगाइए, उसे अपनी जिंदगी बदलने में लगाइए। तो अपनी जो ऊर्जा है उसको वेस्ट मत कीजिए, व्यर्थ मत गवाइए, उसको अपने आप को इम्प्रूव करने में, बदलने में, बेहतर बनाने में लगाइए।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: आर यू लुकिंग

0: for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज

वंदे मातरम। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारा क्या प्लान है, इसके बारे में हम अक्सर दुनिया को बताते रहते हैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन दुनिया हमको हल्के में लेती रहती है। पता है चाणक्य ने भी कहा है, उनकी नीति के अनुसार भी और दुनिया में जितने भी बड़े लोगों ने कुछ हासिल किया है, जब तक आप अपनी मंजिल के करीब ना पहुंच जाए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तैयारी इतनी ज्यादा कीजिए कि आपकी मंजिल में पहुंचने के बाद लोग चौंक जाए, उनको लगे कि ये कैसे हो गया, ये तो पता ही नहीं था। यानी आपके कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसका किसी को पता नहीं होना चाहिए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों।

हमारा जीवन आरंभ होता है। और ऐसे समय पर कवि ने एक चेतावनी दी है, एक महान शिक्षा दी, इसकी ओर ध्यान दें।

गुड मॉर्निंग। जो इंसान खुद को अकेले में संभालना सीख जाता है उसे भीड़ की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती, फर्क नहीं पड़ता। यह मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जो इंसान अकेले में खुद को संभालना शुरू कर देता है, अकेले चलना शुरू कर देता है और दूसरों के भरोसे के ऊपर नहीं टिका रहता है, दूसरों के कंधों की उसको जरूरत नहीं पड़ती, यानी वो सब कुछ खुद अपने बलबूते करना शुरू कर देता है, फिर उसकी पूरी जिंदगी, उसकी कहानी बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है दोस्तों, क्या आप खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो जिंदगी आपको वो देगी जो आप चाहते हैं। जो इंसान अकेले में खुद को संभालना सीख जाता है फिर उसे किसी के भी सहारों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं होता बल्कि अपने उस रूप से होता है जो हार मान लेना चाहता है। बस हमें उसको कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाना है।

0: भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर भजन जीवन धारा सुप्रभात सुनते
1: रहिए। तप दया दान सतयुग में सत्य बोलते थे, झूठ बोलने लगा तो सतयुग चला गया। आ गया त्रेता, त्रेता में सब महात्मा लोग जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, तप करते थे।

ईद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहां हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा न होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई है। ये मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहां पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सीय सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी और

कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की। हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा वातावरण देंगे। ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों, बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच ना कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए। अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ मां

में मन न लगना, चेहरा और त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर से मैं ये लक्षण आपको बता देता हूं, एनीमिया यानी खून की कमी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं, लगातार कमजोरी फील होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन अक्सर तेज महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आपका चेहरा अब दमकना बंद हो गया है, चेहरे पर मायूसी लटकी हुई है, त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना शुरू हो चुकी है, ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सब बच्चे, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं सब में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार इन लक्षणों का कारण एनीमिया ही हो ये भी जरूरी नहीं, इसलिए जरूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन की जांच और अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेना।

उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में और खेलने में, वो लेट जाएगा फोन देखने में मस्त हो जाएगा, उसको रेस्ट करना ज्यादा आरामदायक लगेगा, अच्छा लगेगा। कमजोरी है ये दोस्तों, खून की कमी है दोस्तों ये, उसका विकास अपेक्षा के अनुसार बहुत कम हो रहा है। और माता पिता को स्वास्थ्यकर्मी अपने डॉक्टर के पास तुरंत बच्चे को लेकर जाना चाहिए। बच्चों के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, राजमा, लोबिया, पौष्टिक अनाज और उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक जो भी आपके क्षेत्र में आपके आसपास या आपके घर पर उपलब्ध है, अगर आप घर में नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसको भी शामिल करें, अंडा वगैरह शामिल करें, दूध दही शामिल करें। आयरन की दवा बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के बाद ही दीजिएगा। अपनी मर्जी से बच्चों को कुछ भी खिलाना शुरू मत कर दीजिए, पहले बच्चे की अच्छे से जांच करवा लीजिए, उसके खून की जांच करवाइए, एनीमिया है या किसी और चीज की कमी हो गई है। बच्चों में आजकल स्ट्रेस की, डिप्रेशन की जो शिकायत वो भी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोरी और थकान लोगों को अक्सर सिर्फ उम्र का असर मान लेते हैं, है ना, ऐसा होता है कि उम्र बढ़ गई है, बूढ़े हो गए, तो ये तो उम्र के साथ होता ही है। लेकिन लगातार थकान, सांस फूलना, चक्कर आना कमजोरी के कारण हो सकते हैं, एनीमिया के कारण ये बन सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों में ऐसे लक्षण लगातार अगर बने रहे तो समय पर जांच करवाइए, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों एक और बात जो बहुत जरूरी है, एनीमिया का मतलब हमेशा सिर्फ आयरन की कमी नहीं होता, इसके कारण और भी होते हैं। इसीलिए बिना जांच के खुद से आयरन की गोलियां खाना मत शुरू कर दीजिएगा, ये सही तरीका नहीं है। तो आसान तरीका क्या है, मंत्र क्या है, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना। आपको खाना ऐसा खाना है जो बहुत ही पौष्टिक हो, सिर्फ तला भुना या बाजार का मत खाते रहिए, जो जरूरी है वो खाइए, सही समय पर जांच करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाकर आपको बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर जब डॉक्टर बोले तब दवाइयों को आपको खाना चाहिए। अपने भोजन में दालों का इस्तेमाल कीजिए, चने का इस्तेमाल कीजिए, राजमा, लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार या बाजारों का भोजन कम कर दीजिए। भोजन में विटामिन सी से भरपूर मात्राएं लीजिए, जैसे कि आंवला होता है, अमरूद होता है, नींबू होता है, इनको आप खाइए, आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है ये विटामिन सी, इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, कमजोरी को हमेशा सामान्य मत समझिए। जरूरत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या अपने प्राइवेट डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करवाइए, ये बहुत मददगार रहेगी आपके लिए। खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती दोस्तों, लेकिन सही समय पर पहचान होना और सही समय पर सही तरीके से इलाज हो जाए तो इससे निपटना बहुत आसान है।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हमने एनीमिया के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यहाँ पर बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब में एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इस समस्या को छोटा मत समझिए। लगातार चक्कर आना, याददाश्त का कमजोर होते रहना, सिर्फ अपनी मर्जी से आयरन की गोलियां मत खाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक भोजन लेना है, सबसे जरूरी अपने डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए, जब डॉक्टर बोले वो खाइए, वो दवाइयां बोले तो दवाइयां खाइए, वो बोले कि अच्छा खाना पीना आपको लेना है तो पौष्टिक भोजन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती, लेकिन समय पर इसको समझना, पहचानना और इसको निपटाना बहुत जरूरी है। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं, अपने परिवार में सिर्फ खाना भर नहीं, पोषण भी देखेंगे। सिर्फ चटपटी चीजें नहीं खानी बनानी है, अच्छी चीजें भी बनानी खानी है। पार्टी का भी दिन रख लीजिए, लेकिन रोजमर्रा में आपको अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें वगैरह खाइए। बच्चे आजकल बहुत जिद करते हैं बाहर का खाना, उनको मोमोज खाने हैं, बर्गर, चाउमीन और ना जाने क्या क्या खाना होता है ना, चिप्स, पैकेट वाली चीजें खानी होती है। पैकेट वाली चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बच्चों को और बुजुर्गों को, याद रखेगा ये बात, क्योंकि

उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी चीजें जो पैकेट बंद आती हैं, बाजारों में उपलब्ध होती हैं, कोशिश करें किसी खास ओकेजन पर बच्चों को पार्टी के लिए किसी एक दिन दे दीजिए। रोजमर्रा में आपके बच्चे में लगातार खून की कमी हो सकती है अगर आप अच्छा खाना उनको नहीं देते हैं। और बच्चों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाजारों की चीजों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। पैकेट बंद चिप्स मत खाइए, पैकेट बंद चीजें, ज्यादा चटपटी चीजें मत खाइए। अपने घर में चिप्स बनवा लीजिए अपनी मम्मी से, अपने घर में अच्छी चाउमीन भी बनवा सकते हैं। देखिए बाजारों में क्या चीज किस तरह की आ रही है नहीं पता, इसलिए घर पर चीज बनवाइए, खाइए। और कोशिश कीजिए दालें, प्रोटीन युक्त भोजन, पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, अच्छी रोटी वगैरह खाना, इनको शामिल कीजिए। खून की कमी आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो या पुरुष, सभी के जीवन में जरूरी है इसको पहचानना और समय पर इसको समाप्त कर देना। और याद रखिए दोस्तों, कमजोरी को सिर्फ थकान कहकर नजरअंदाज आज के बाद मत कीजिएगा। बीमारी का इंतजार नहीं करना है, समय पर जांच करानी है। स्वस्थ शरीर, मजबूत परिवार, स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारे अपने खुद के शरीर से और स्वास्थ्य से होती है। मैं हूं आपका दोस्त वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए

0: अजी संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस, बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो, आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान, स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

है कि आपके जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छुआ है आपने, बल्कि ये है कि आपने अपनी राह में आने वाली कितनी रुकावटों का सामना हिम्मत से किया है। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी है मेरे दोस्त, हिम्मत से बस ये जो कारवा है इसको लेकर चलते जाना है। अक्सर हम सफलता को केवल अंतिम परिणाम पद, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर फिर से आ गई हूँ आपके पास। 9:34 हो गए हैं। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, शागिर्द मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना है ना, और इस गाने को जब आप सुनते हैं तो बड़ा ही चुलबुला चटपटा सा गाना। फिलहाल चलिए हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। आज है तारीख 10 अक्टूबर, और आज का इतिहास क्या कहता है चलिए आपसे बता देती हूँ। साल 1756 की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मद्रास से कलकत्ता को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए कूच किया था। 1910 में वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहीं 1992 में कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाली हुगली नदी पर बने देश के विशाल केबल ब्रिज विद्यासागर सेतु को जनता के लिए खोल दिया गया था। वहीं 2014 में भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफ जई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। वहीं अगर विश्व भर में घटनाओं की बात करें तो 1846 में ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने नेपच्यून ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम ट्रीटॉन की खोज की थी। वहीं 1893 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया की पहली कार नंबर प्लेट दिखाई गई। वहीं 1911 की बात करें तो आपको बता दूं चीन में वुचांग विद्रोह के साथ सिंहाई क्रांति की शुरुआत हुई थी जिसने चिंग राजवंश का अंत कर दिया था और चीन गणराज्य की नींव रखी थी। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे साझा करनी है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कॉल या

मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111। इस नंबर पर आप किसी गाने की फरमाइश के साथ साथ किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है वो भी कर सकते हैं। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना संगम मूवी का आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद इन रेडियो 90.0 FM।

0: Khan starting at just 12 lakhs. For more details, contact us at 9999126127.
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद।

है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इतिहास ऑफ द डे. 10 अक्टूबर का इतिहास क्या कहता है, चलिए आपको बता देती हूँ और भी कई बातें. 1964 की बात करें तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह पहली बार उपग्रह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था. वहीं 1970 में फिजी को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इसी दिन फिजी के राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट करते हैं. वहीं 2005 में एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर निर्वाचित हुई थी. इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन को खास बनाती हैं. जैसे कि 1731 की बात करें तो हेनरी केवेंडिश ने प्रसिद्ध ये जो रहे हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी, इनका जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है. वहीं आर के नारायण जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, जो मालगुड़ी डेज के रचयिता थे, विख्यात भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार ये रही हैं, 1906 में इनका जन्म हुआ था. वहीं 1912 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, आलोचक और भाषाविद हैं. साथ ही साथ बलवीर सिंह जो कि भारत के महान हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, इनका जन्म भी आज के दिन हुआ था 1924 में. हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जी हाँ, इनका जन्मदिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है, इनका जन्म हुआ था 1954 में. वहीं बहुत सारी बातें हैं मुझे जो आपसे साझा करनी है, करूँगी धीरे धीरे, मगर फिलहाल ये गाना इन्जॉय करेंगे. संगम मूवी का आई होप आपको पसंद आएगा. उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें. कहीं मत जाइएगा दोस्तों.

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है द्वारा हर साल मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। वहीं आपको बताऊं नेशनल पोस्ट डे यानी कि डाक दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। भारत में डाक सेवाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड के विरुद्ध विश्व दिवस भी मनाया जाता है। मृत्यु दंड के उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु वैश्विक स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है। बाकी दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे करूंगी, 10:16 हो गए हैं। इस पर मैं स्टूडियो क्लॉक, आपको कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर। मीर वाली इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। चलती का नाम गाड़ी ये मूवी का नाम और गाना आप अभी सुन ही लेंगे।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों बहुत सारी बातें के साथ आपके पास आ गई हूँ. 10:45 हो गए हैं, 10 ही तारीख आज की है और अभी हमने तेरा मुझसे है पहले का नाता को ही. ओह माय गॉड, इतना प्यारा गाना कोई कैसे ही लिख सकता है, कोई कैसे ही बना सकता है. आप समझ पा रहे हो जब ये गाना लिखा गया होगा तो उस लिरिसिस्ट ने क्या सोच कर या किसके लिए गाना लिखा होगा, है ना. सच में कितने ज़्यादा भाव और कितने ज़्यादा फीलिंग्स, है ना, इमोशंस इस गाने में. इसी के साथ दोस्तों भारतीय संगीत जगत के अमर हस्ताक्षर मैं कहना चाहूँगी, या जिनको गज़ल सम्राट के रूप में आप जाना करते हैं, जगजीत सिंह का निधन आज ही के दिन हुआ था 2011 में. उनके गज़लों ने न केवल शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि आम आदमी की भावनाओं को भी बहुत करीब से देखा था. लेकिन क्या आपको पता है कि उनका नाम जगजीत रियल नहीं था? बताऊंगी क्या नाम था उनका रियल. आपको बता देती हूँ कि उनका जो जन्म 8 फरवरी को 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक सिख परिवार में हुआ था. उनके बचपन का नाम जगमोहन सिंह था, ठीक. और इसी के साथ आपको बताऊं, उनके पिता अमर सिंह संगीत का बहुत ज़्यादा शौक रखा करते थे, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही जगजीत को संगीत सिखाना शुरू कर दिया था. उन्होंने पंडित छगनलाल शर्मा और बाद में उस्ताद जमाल खान से शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा भी ली. वहीं संगीत में अपना मुकाम बनाने के लिए उन्होंने जालंधर और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी में काम किया. इसके बाद 1965 में वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुँचे, जहाँ शुरुआती दौर में उन्हें विज्ञापनों के जिंगल्स गाने और छोटे छोटे काम करने पड़े और उसके बाद इतिहास गवाह है. हम और आप देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं. उस दौर में गज़ल गायकी पर बेगम अख्तर, मलिका पुखराज और तहत महमूद जैसे दिग्गजों का प्रभाव था. लेकिन उसके बाद क्या समय बदला है, है ना. जगजीत सिंह ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया. उन्होंने गज़ल में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार, सिंथराइज़र और बांसुरी का बहुत ही सुंदर से उपयोग किया और बैलेंस्ड वे में किया. बाकी और भी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, पहले ही गाना.

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं जगजीत सिंह के बारे में, क्योंकि आज के दिन वो हम सभी को अलविदा कह करके चले गए थे। दोस्तों, आपको बताऊं कि जगजीत सिंह ने ना गज़ल की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने गज़ल में वेस्टर्नाइजेशन, जैसे कि गिटार, बांसुरी का बहुत ही सुंदर और संतुलित प्रयोग किया है। उन्होंने जटिल उर्दू शब्दों वाली गज़लों के साथ साथ बेहद सरल और दिल को छू जाने वाली रचनाओं को भी चुना, जिसमें आम लोग भी गज़ल की गहराई से जुड़ सके। इसी के साथ आपको बताऊं दोस्तों कि 1969 में उनकी मुलाकात बंगाली गायिका चित्रा दत्ता से हुई थी, जिनके साथ उन्होंने अपने पेशेवर रूप से गाना शुरू किया और बाद में फिर उनसे विवाह भी किया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की इस जोड़ी ने भारतीय संगीत उद्योग में तहलका मचा दिया था। 1976 में आया उनका एल्बम दी अनफॉरगेटेबल्स, भारत का पहला ऐसा नॉन फिल्म कैसेट जो सुपरहिट साबित हुआ और रिकॉर्ड तोड़ इसकी बिक्री दर्ज की गई। दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे करूंगी, फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 11:21 हो गए हैं एंड वी वर टॉकिंग अबाउट जगजीत सिंह जी कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या स्ट्रगल किया, किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की और आज ही के दिन वो हमें अलविदा कहकर के चले गए थे। दोस्तों आपको बताऊं, जगजीत सिंह ने कई हिंदी फिल्मों के लिए अपनी सुरीली आवाज़ दी और संगीत निर्देशन भी किया था। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय और सदाबहार फिल्में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता देती हूं जिसमें उनके गीत रहे। अर्थ जो कि 1982 में आई थी, बात निकलेगी तो दूर तक,

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: मेरा देहरादून कॉल करें 9760920865।
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान, स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ। और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँच हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा होचला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली

0: आर्यवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आर्यवंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
1: आँखों ही आँखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि आपको पता ही है, यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। वो कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा भी उन्होंने ही दिया।

ये किताब हमको सिखाती है अपने देश से प्रेम करना। दोस्तों, जैसा कि आजकल आपने खूब सुना होगा सिविक सेंस के बारे में, यानी एक नागरिक का आचरण, एक चरित्र कैसा हो, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार का होना चाहिए। यह किताब हमको सिखाती है कि देश का निर्माण केवल मानचित्र की वक्रीय रेखाओं से नहीं होता, उसका एक चेतना लोक भी होता है जो नागरिकों, व्यवस्था संचालकों और राजनेताओं के ईमानदार प्रयासों से सक्रिय होता है। इस चेतना लोक में उस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और गौरवशाली प्रसंग और इतिहास सम्मिलित होता है। भारत की मूल संस्कृति सदैव सनातन रही है। ये सनातन संस्कृति का ही प्रभाव है कि आज भारत में संपूर्ण विश्व के सभी मतों को मानने वाले लोग पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह संस्कृति सर्वग्राह्य संस्कृति है जो मानव और मानव के मध्य की भेदक रेखा को समाप्त करती है। जहाँ जहाँ इस संस्कृति का नुकसान हुआ है, वहाँ वहाँ सामाजिक स्थिति बद से बदतर हुई है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान इसके उदाहरण रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश सजीव उदाहरण है। यदि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं एवं विकास करना चाहते हैं तो सनातन को बचाने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति अथवा धर्म है क्या? सनातन किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड अथवा पारलौकिक मान्यताओं के मकड़जाल में उलझी कोई व्यवस्था नहीं। सनातन वे भाव हैं जो सृष्टि की रचना के साथ आए एवं जब सृष्टि रहेगी तब तक उन्हीं भावों के आधार पर रहेगी। वे भाव है प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें उपयुक्त सभी भाव हों। धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सभी कहे जाने वाले कथित धर्म तो केवल संप्रदाय या मत ही हो सकते हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक है। गणतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सूचना

संचार प्रणाली, जिसे हम सुविधा के लिए सम्मिलित रूप से मीडिया भी कह देते हैं। इन सभी संस्थाओं की कार्यशैली वर्तमान में परिष्करण अथवा आमूलचूल सुधार चाहती है। दूसरी ओर वर्तमान में आम जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के दलदल में फंसी हुई है, निकलना ही नहीं चाहती। देश के विषय में सोचने का इनके पास ना तो समय है और ना ही इच्छा। चीन में वर्तमान सत्ता हमारी कथित स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई। आज

हम आपका ये कर्तव्य आपका ये धर्म बनता है कि सबसे पहले हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ये प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि अपने देश के भावी कर्मचारियों को अपने देश का सही इतिहास बताया जाए, उन मूलभूत विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र के लिए आवश्यक है। बस यही एक उपाय है। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाना चाहते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के विषय में सोचें, उनमें राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो, कि देश को ऐसी युवा पीढ़ी मिले जो राष्ट्रीय भाव को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए देश के नव निर्माण में सहयोगी हो। किसी भी समाज का निर्माण चरित्रवान नागरिकों से होता है। चरित्र की परिभाषा बहुत ही व्यापक है, उसमें नैतिकता के साथ राष्ट्रबोध एवं राष्ट्र शोध भी सम्मिलित होते हैं। इसी भाव से इस कार्यक्रम को भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम का आधार है राष्ट्र अनुभूति। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो की इस खास पहल में आप भी जुड़िए और आपके विचार शेयर कर सकते हैं 9639012111 पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय एवं सुभारती ग्रुप के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। डॉक्टर अतुल कृष्ण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, संभवतः यह किसी एक व्यक्ति का नाम हो भी नहीं सकता। डॉक्टर अतुल सरीखे किसी व्यक्तित्व का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक, विस्तृत, भव्य और विशाल हो, उसे किसी परिभाषा के दायरे में रखकर परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी मूल रूप से शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन ये उनका एकमात्र परिचय नहीं। वे जितने प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक रहे हैं, उतने ही कर्मशील एवं ध्येयनिष्ठ सामाजिक शल्य चिकित्सक भी हैं। सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए वे वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रकल्पों का नेतृत्व भी करते हैं, साथ ही उसमें अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सहभागिता भी करते हैं। जैसा कि उनके चिंतन और व्यवहार से लगता है कि वे एक स्वस्थ सामाजिक संरचना के पक्षधर हैं, इस दिशा में उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष उनका राष्ट्र चिंतन है, भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति परम आस्था और राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान भाव उनके स्वाभाविक कर्म का आधार है। उनकी राष्ट्र शोध से राष्ट्र बोध की वैचारिक यात्रा उनको समाज और राष्ट्र में विशिष्ट बनाती है। उनकी लिखी इस अलौकिक पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर आधारित राष्ट्र चेतना कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

क्यों भाई, फाइव स्टार होटल बना रही है गदरे के साथ? बादशाह सराय बनाया करते थे मुसाफिरों के लिए, प्याऊ भी लगाया करते थे प्यासों के लिए। तू पंप लगवा दे, नल लगवा दे बस्ती में, लोग दुआएं देंगे। 50 साल हो गए पानी नहीं दे सके।

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियाँ मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक

हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए। अपने बच्चों को वो सारे संस्कार कंट्रोल रूप में देना जिससे उसका भविष्य का निर्माण होगा। हर उस बात पर कंट्रोल एक माता पिता का होना चाहिए जो आपके बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान,
1: मेरे देश की धरती।
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

0: सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में। आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: ये आसमान में रहने वाले आज धरती पे क्यों कर?
1: मैं तेरी खातर आई सू।
0: अच्छा, पहले का दिन आई मेरी याद तन्ना।
1: तेरे बिना सारा चंडीगढ़ सुना सुना लग गया था।

ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन के नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ मनसा सेठ की हाँ लड़की।

आई हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागर से चिट्ठी आ जाती है भात की, अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है। और कहने के झगड़े बहुत है, आप श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं? सरसागर में आ जाते हैं। और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे, जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी लज्जा को डबो दिया, आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है और क्या नरसिंह बाप और बेटी की क्या आपस

जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। यह जय जवान जय किसान और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सरसों की अगेती फसल के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगेती फसल बोना तो अच्छी बात है, लेकिन हर बीज अगेती फसल का नहीं होता, उसके लिए अलग बीज आते हैं, हाइब्रिड बीज आते हैं। आप जब भी बीज वाली दुकान पर जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि आपको कौन सा बीज, किस वैरायटी का बीज और क्यों चाहिए, तब वो आपको दो चार ऑप्शन देंगे, फिर एक अच्छा ऑप्शन आपको लेकर आना है और फिर अपनी फसल आपको बोनी है। अच्छे बीज का चुनाव ही आपको करना चाहिए दोस्तों, प्रमाणित बीज हो और अपने क्षेत्र के अनुकूल परिस्थितियों के लिए। मान लीजिए आपके यहां पर वातावरण कैसा रहता है, अगेती किस्म का जो बीज होता है आपको वो लेना है, क्योंकि अंकुरण और फसल की एक रूपता बेहतर रहती है उसमें। बीज उपचारित करना भी जरूरी है। आजकल जो कंपनीज होती है वो उपचारित करके ही बीज को बेच रही है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद नमी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं रहना चाहिए, खेत में भरा हुआ पानी फसल को नुकसान पहुंचाता है।

जय हिंद वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। जय जवान जय किसान, और मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। किसान भाइयों, यहां पर हमने बहुत सारी बातें की है सरसों के बारे में। कुछ किसान भाइयों का कहना होता है कि अगेती बोना ही क्यों है। देखिए, अगेती फसल के अपने अलग तरह के लाभ होते हैं, पछेती फसल के अलग तरह के लाभ होते हैं, और नॉर्मल टाइम पर सीजन में पीक में जो आप सरसों या कोई भी फसल बोते हैं उसके अपने अलग लाभ होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और आपकी पिछली फसल जो खड़ी है खेत में वो कब कटेगी। अगेती फसल का एक मूल लाभ यह है कि सही समय, सही किस्म और अच्छी देखभाल

जय हिंद किसान भाइयों, ये है आपका अपना जय जवान जय किसान कार्यक्रम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। हमने बात की आज यहाँ पर सरसों की फसल के बारे में। अगेती बोएंगे तो बहुत लाभ है, वैसे सरसों आप कभी भी बोएं लाभ ही होता है, मतलब अपने सीजन में बोएं कभी भी बोएं लाभ ही होगा क्योंकि सरसों के रेट हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। सरसों एक ऐसी फसल है जिसका पत्ता भी बिकता है, जिसका साग आप बेच सकते हैं शुरू में काटकर, फिर आप उसकी लकड़ी भी बेचेंगे, लकड़ी का भूसा भी बिकता है, सरसों की खली भी बिकती है, सरसों का

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो।
2: ए सठानी नीर बुरन चलेगी
1: आज ना जाऊँ ना गई तो पूरी बन ठंड कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजान में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी, मैं चली जा।

0: करना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24

सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में मैं हूँ वास्तु कृष्ण आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जिसकी कमी कई बार शरीर में चुपचाप बढ़ती रहती है। शुरुआत में लगता है बस थोड़ी कमजोरी है, थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी हाथ पैरों में थोड़ी झंझनाहट या सुन्नपन होना, कभी चक्कर आना। हम कहते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई है, शायद काम ज्यादा हो गया था, शायद डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस हो गया है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इन छोटी छोटी परेशानियों के पीछे विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, याद रखिए। और B12 की कमी वाले को हल्के में बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेना, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ खून से नहीं होता बल्कि हमारे दिमाग और नसों के स्वास्थ्य से भी होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा B12 की कमी, कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव यानी इसका ट्रीटमेंट।

जी हाँ दोस्तों, यह सेहत सही लाभ गई वास्तु कृष्णा के साथ है आप सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। विटामिन B12 आखिर है क्या, इसकी कमी क्यों होती है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कमी कितने समय में सामने आती है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या खाना चाहिए और सबसे जरूरी इलाज कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। B12 हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, DNA बनाने में, नर्वस सिस्टम यानी हमारी नसों के सही कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर शरीर में एक तरह की एनीमिया हो सकती है, यानी समस्या सिर्फ एनीमिया तक नहीं रहती, कुछ लोगों में नसों से जुड़े लक्षण एनीमिया से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि B12 की कमी आखिर होती क्यों है? सबसे पहला कारण है खाने में पर्याप्त B12 ना मिलना। B12 प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और दूध दही जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में मिलता है। जो लोग लंबे समय तक पूरी तरह से शाकाहारी या वीगन भोजन लेते हैं उनमें B12 की कमी सामने नजर आने लगती है। दोस्तों पुराने जमाने में याद होगा कि हम अपने खेत से कुछ मूली गाजर ऐसे उखाड़ कर सीधा खा लिया करते थे, है ना? तब केमिकल इतने ज्यादा नहीं होते थे, कीटाणुओं से हम लोग इतना ज्यादा नहीं डरा करते थे। मिट्टी में B12 होता है दोस्तों, और मांसा जो हार होता है, जो मांस से जुड़ी जैसे अंडा, मछली या जो भी मीट वगैरह के ऐसे खाने के प्रोडक्ट होते हैं लोगों के, उनमें B12 इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग ना मिट्टी, घास ये सब ज्यादा खाते रहते और मिट्टी उस माध्यम से उनके अंदर चली जाती है, ऐसा माना जाता है। तो बात अब यह है, B12 की कमी सिर्फ कम B12 खाने से नहीं होती। कई बार व्यक्ति अच्छा खाना खा रहा होता लेकिन फिर भी शरीर B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कि हमारा जो शरीर है वो ठीक से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है, तब भी B12 की कमी हो सकती है। क्योंकि भोजन से B12 को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए पेट और आंत की एक पूरी प्रक्रिया की जरूरत होती है। पेट में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पेट या छोटी आंत से जुड़ी समस्या है, कुछ प्रकार की सर्जरी हुई है या शरीर B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो भोजन पर्याप्त होने के बावजूद भी ये कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से भी B12 एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिंस और मेटफॉर्मिन। इसका मतलब ये नहीं कि इन दवाओं को अपने आप बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसी दवा लेते हैं तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ भी B12 एब्जॉर्प्शन की

0: समस्या ज्यादा देखी जा सकती है और कुछ लोगों में इसकी समस्या तब भी ज्यादा नजर आती है जिनका पेट अक्सर खराब रहता है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है, तब 100% आपके अंदर कमी आएगी B12 की। आगे इस बारे में और बात करेंगे।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

तालीमा वैया हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, सबसे आसान उदाहरण आपको बताता हूं, याददाश्त। अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें भूल रहे हैं, ज्यादा भूल रहे हैं, लोगों के या जगहों के नाम भूल रहे हैं, तब याद रखिए, ध्यान रखने में परेशानी, किसी की बात को ध्यान से सुनने में परेशानी, अभी एक ही मिनट पहले कोई बात हुई और आप उसे भूल गए, आप जगह का नाम भूल गए, आप बात करते करते भूल गए, यकीन मानिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ये लक्षण है विटामिन B12 के बारे में। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि इन सभी लक्षणों से कभी ना कभी मैं भी दो चार हुआ था, तब मुझे भी पता चला कि ये B12 की कमी है। दोस्तों, अगर याददाश्त में कमजोरी आ गई है, मतलब आपको याद नहीं रहता, दो मिनट पांच मिनट पहली बात भूल गए, कमरे में घुसे किसी चीज को लेने के लिए और भूल गए क्यों आए थे, किसी से बात करते करते कोई बात भूल गए और बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रही है, लगातार कमजोरी होना, हाथ में, हाथ की किसी भी उंगली में, पैर में,

अगर किसी भी व्यक्ति को आज बी 12 कम मिला तो जरूरी नहीं कि कल उसके हाथ पैर सुन हो गए होंगे या चक्कर आना शुरू हो जाएगा। B12 डेफिशिएंसी के लक्षण कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, यानी आज की परेशानी का कारण कई बार लंबे समय तक चल रही कमी हो सकती है।

0: Cancer Hospital. To know more, call now 9639010313. सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more, call now 9639010313.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई। और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर मतलब आप समझे चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के

पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार हैं, पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले, इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि

हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहां हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

अक्टूबर के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। इसे मनाने के उद्देश्य और महत्व के बारे में बात करें तो ये दिन भारतीय डाक विभाग के अथक प्रयासों और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को समर्पित है। ये विभाग दुनिया में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क चलाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि डाक सेवाएं कैसे देश के सबसे दूर दराज के कोनों को जोड़कर संचार का एक मजबूत पुल बनाती है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास संभव होता है। बातें चलती रहेंगी, आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम है आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे

0: कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: thôi.
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और बातें हम कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये लोगों को ये समझने में मदद करता है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। ये सरकारों, संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने और मानसिक स्वास्थ्य को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये मानसिक बीमारी से जुड़े भेदभाव और कलंक को दूर करने के लिए काम करता है ताकि लोग बिना किसी डर या शर्म के मदद ले सकें। ये लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातचीत करने, अनुभव साझा करने और समर्थन मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने पर भी जोर देता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और भाई देखिए, अपने शोज में तो मेरी यहां पर आपसे ढेर सारी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़कर कहीं और बात करना चाहते हैं तो वो जगह हो सकती है हमारे सोशल हैंडल्स। सो अभी तक अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर तो कनेक्ट हो जाइए। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको फेसबुक यानी कि मेटा पर भी मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी चाहते हैं। यहां पर कनेक्ट होने से क्या होगा कि आप हमें कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव भेज पाएंगे, अपने पसंदीदा ट्रैक के लिए भी फरमाइश आप कर पाएंगे। सो जुड़ना क्यों नहीं है जब इतने सारे फायदे हैं। अभी जुड़िए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज मैं मेरे मेरठ वासियों के लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो बॉस, अगर आप भी अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं दूर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लेकर आया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो, और वो भी सीधे आपके अपने शहर मेरठ में। जी हाँ, मार्क द डेट, इसी संडे 11 अक्टूबर को। जगह नोट कर लीजिए, होटल हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या खास मिलेगा, तो जी मैं आपको ये बता दूं, यहाँ आपको एक ही छत के नीचे यानी कि इस एक्सपो में नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैचीधाम, तेहरी, कसोली, गोवा और यहाँ तक कि अंडमान जैसी बेहतरीन लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के सुपर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, ये शानदार डील्स शुरू हो रही है बस 12 लाख रूपए से। तो है ना एकदम पैसा वसूल डील, तो देर किस बात की, अपनी प्रॉपर्टी बुक करने का ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9999126127 पर। नंबर अगर नहीं लिख पाए हैं तो दोबारा बता देता हूँ 9999126127। तो संडे को मिलते हैं BW प्रॉपर्टी एक्सपो में सिर्फ होटल हार्मनी इन पर। तब तक सुनते रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और जी त्योहारों का सीजन हो और डांडिया की झंकार ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सही कहा ना मैंने। तो आपके इस जश्न को दोगुना करने आ रहा है हिंदुस्तान का उत्सव डांडिया नाइट्स। जी हाँ, 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे से साकेत स्पोर्ट्स क्लब मेरठ बनने वाला है शहर का सबसे हैपनिंग पॉइंट। और सबसे कमाल की बात, लाइव परफॉर्म करने आ रही हैं बॉलीवुड सिंगर अनीता भट्ट। तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस निकाल लो, डांडिया स्टिक्स रेडी कर लो और अपने गैंग के साथ पहुंच जाओ साकेत स्पोर्ट्स क्लब मेरठ में ठीक शाम 7 बजे। बाकी पास और टिकट्स के लिए आप livehindustan.com पर जा सकते हैं। मैं बाकी इस इवेंट में आपसे मिलने वाला हूं, आपसे यही

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए, अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती, अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनती रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आप

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।